आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्ली तव समे गृहे निच देव्ये मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्प

0: अगं पर असं का
1: मोडकच घर तुटकच छप्पर
0: मग असं ना
1: अव मोडकच घरन तुटकच छप्पर
0: मग राह की त्यात
1: अव पण राहायला

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

तरी संकट विघ्न कैचे तया धन्यते शिव ध्यानीरत येची विषयी कथा अद्भुत नैमिषारण्यी सांगत सूत शौनकादिका प्रति वामदेव नामे महाज्ञानी शिव ध्यानीरत विचरे काननी एकाकी निर्माय शांत दांत जनी त्रिविध भेद रहित जो दिशा जयाचे अंबर भस्मचर्चित दिग

पया सर्व विचरे सृष्टि स्व इच्छे कार्या कार्य सारुनी कारण आत्मस्वरूपी पावला समाधान देहत्रय रही।

ब्रह्मांड जाळून भस्म अंगी चर्चिले, ऐसा तो अमूर्ता मूर्त केवळ शुक की जड भरत, क्रौंचारण्यी विचरत सर्व ही देखत शिवरूप। तो एक ब्रह्म राक्षस धावत महाभयानक शरीर।

परम दुर्धर, ऐसे अंगास डसविति विखार, अग्निशिखा लावोनी सत्वर, हे शरीर भाजिले, अंतरिक्ष असिधारे।

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

भक्ति सुधा इंटरनेट रेडियो स्टेशन पर सुनिए ईश्वर भक्ति के अमीट स्वरों का हिंदी भक्ति संगीत कार्यक्रम भक्ति सुमन। भक्ति सुमन सुनिए हर दिन दोपहर 2:30 बजे। श्रोते हो, भक्ति सुधाच्या इतर सर्व कार्यक्रमांची आणि उपक्रमांची माहिती घेण्यासाठी भक्तिसुधा.co.in या आमच्या वेबसाईटला अवश्य भेट द्या।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

आइए सुनते हैं हेमंत कुमार जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण जी का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निच देव्ये मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां

श्रोताओं आप सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

अक्षरो मंत्रः समुख्यायाम स्वाहातो वा। पुढील मंत्र हा 22 वेळा उच्चारावा। हरहि ओम उच्चिष्ट देवे नमः डाकिनी सुमुखी देवी महापिशाचिनी ओम ऐं ह्रें ठाठ। द्वाविशत ओम चक्रधरायाः अहम रक्षाम कुरु कुरु सर्व बाधा हरणि देवे नमो नमः सर्व प्रकार बाधा शमनम अरिष्ट निवारणम कुरु कुरु। फट श्रीम ओम कुब्जिका देवे ह्रीं ठस्वाहा शीघ्रम अरिष्ट निवारणम कुरु कुरु। देवी शाबरी क्रीं ठस्वाहा शारीरिकं भेदाहं मायां भेदय पूर्णम आयुः कुरु। हेमवती मूल रक्षां कुरु चामुंडाई देवे नमः। शीघ्रं विघ्न निवारणं सर्व वायु कफ पित्त रक्षां कुरु। भूत प्रेत पिशाचान घातय जादू टोणा शमनं कुरु। सती सरस्वती चंडिका देवी गलं विस्फोटकान विक्षित्य शमनं कुरु। महाज्वर रक्षयं कुरु स्वाहा सर्व सामग्रीं भोगं सत्यं दिवसे दिवसे देहि देहि रक्षां कुरु कुरु। क्षणे क्षणे अरिष्टं निवारय दिवसे दिवसे दुःखहरणं मंगलकरणं कार्यसिद्धिं कुरु कुरु।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

सर्वांच्या अनुग्रहास्तव ते स्वरूप धरोनी विचरे शिव जडजीवतारा वया सर्व विचरे सृष्टी स्व इच्छे कार्याकार्य सारुनी कारण आत्मस्वरूपी पावला समाधान देहत्रय रहित।

पूर्ण निरसो न धुवो निशुद्ध केले जीवन एव पिंड ब्रह्मांड जाळून भस्म अंगी चर्चिले ऐसा तो अमूर्ता मूर्त केवळ शुक की जड़ भरत क्रौंचारण्यी विचरत सर्व हि देखत शिवरूप तो एक ब्रह्म राक्षस धावत महाभयानक शरीर।

चरित्र सांगे शिवाचे, मंदरगिरी परम पवित्र, उंस योजने अकरा सहस्र, त्यावरी एकदा त्रिनेत्र, देवासहित पातला, यक्षगण गंधर्व किन्नर, चारण पिशाच गुह्यक समग्र।

पर्वत जाण भस्म चर्चने भस्म होती। ऐसा भस्माचा महिमा वामदेव ब्रह्मराक्षसा सांगे सर्व विमान आले अपूर्व दिव्य रूप असुर झाला।

ते चिता भस्म चर्चूना सांब पूजन करावे मग शुचिर्भूत होवोनी शबरी शिव ध्यान स्मरण करी अग्नि लावोनी।

भक्ति सुधा इंटरनेट रेडियो स्टेशन पर सुनिए ईश्वर भक्ति के अमित स्वरों का हिंदी भक्ति संगीत कार्यक्रम भक्ति सुमन। भक्ति सुमन सुनिए हर दिन दोपहर 2:30 बजे। श्रोते हो, भक्ति सुधाच्या इतर सर्व कार्यक्रमांची आणि उपक्रमांची माहिती घेण्यासाठी भक्तिसुधा.co.in या आमच्या वेबसाईटला अवश्य भेट द्या।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

आइए सुनते हैं हेमंत कुमार जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण जी का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।